0: जैकलिन मुकम्मल तौर पर गैर महफूज रहे और लोग हैरानी से उसकी तरफ देखते रहे। बुलेट प्रूफ जैकेट जिसे पोलिश मौजूद ने याद किया था, उसे गोली का एक जख्म भी नहीं लगा। सामिन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसे एरिजोना के एक डॉक्टर ने इत्तफाक से देखा, उसने जैकलिन की बुलेट प्रूफ बनियान की इजाद को मुतासर किया और कैश्मीर जैकलिन ने पहली बार अपनी नई इजाद को पेटेंट किया। थोड़े ही अरसे में बहुत से अमरीकी असलाह साज इदारों ने भी इस नई इजाद को आगे बढ़ाया, जो बैलिस्टिक सिल्क मटेरियल, स्टील प्लेट्स, मजबूत अस्तर कपड़े और चमड़े के पट्टे के निज़ाम पर मुश्तमिल थी। वक्त गुजरने के साथ साथ बुलेट प्रूफ जैकेट फौजी और पुलिस दोनों महकमों का एक लाजमी हिस्सा बन गई और उसने बहुत से सियासी कत्लों की नाकामी में अहम किरदार अदा किया। आज टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ स्टील वास्किट की तैयारी में बहुत से मुख्तलिफ मवाद इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन बिलआखिर बहुत से लोग, चाहे फौजी, पुलिस या सियासतदान, जैकलिन की इस हादसाती ईजाद के मरहूने मिन्नत हैं। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
1: इजादा।

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत के लिए अमरीका का दौरा इंतहाई सिक्योरिटी खदशात, एहतजाज और गिरफ्तारी के खदशात के दरमियान शुरू हुआ। इसराइली ज़राए इब्लाग की खबरों के मुताबिक गज़ा में होने वाले कत्लेआम और आलमी फौजदारी अदालत की जानब से मुमकिन वारंट गिरफ्तारी की वजह से नेतन्याहू का अमरीकी दौरा काफ़ी मुख्तसर और एक दिन तक महदूद रहा। यूरोपीय ममालिक की फजाई हदूद से गुरेज और जुनूब की तरफ लंबे रास्ते का इंतखाब करते हुए नेतन्याहू का तैयारा न्यूयॉर्क की बजाय न्यूजर्सी में उतरने की तवक्को की जाती है। मुबसरीन का ख्याल है कि रूट और हवाई अड्डे की तब्दीली की वजह न्यूयॉर्क के मेयर सोहरान ममदानी के साथ कशीदगी है। नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार देने वाले ममदानी ने इनकी गिरफ्तारी की अपील की थी। प्रोग्राम मुख्तसर होने की वजह से एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के साथ तयशुदा मुलाकातें मनसूख कर दी गई हैं और नेतन्याहू सिर्फ अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूपियो से मुलाकात करेंगे।
0: ट्रंप ने न्यूयॉर्क में मुनक्दा कौनता के जनरल असम्बली से खिताब किया। अपनी तकरीर के आगाज में अमरीकी दाखिली सियासत मईशत के बारे में तवील जायजे पेश करने के बाद ट्रंप ने आइंदा कांग्रेस ज़िम्नी इंतखाबात से पहले अपने हामी को पैगाम भी दिए। सदर अमरीका के तौर पर अब तक 8 जंगें खत्म करने का दावा करते हुए ट्रंप ने कहा, रूस यूक्रेन जंग, ईरान के साथ तनाजात का समय, इंसानी बोहरा और दीगर इलाकों में होने झड़पों के हल के लिए बड़ी कोशिशें सर्फ कर रहे हैं। ईरान के बारे में अपनी गुज़िश्ता बातों को जज्बी तौर पर दोहराते हुए ट्रंप ने कहा, मुझे यकीन है 3 नवंबर के इंतखाबात के फौरन बाद ईरान के साथ मुआहदा तय पा जाएगा, क्योंकि इनके लिए ये ना करना ज़ी फहम नहीं होगा। सदर ने जोर दिया, वो या तो ईरान के साथ मुआहदा करने, ईरान को निस्तन मबूद करने के बारे में फैसला करने के बहले में है। ट्रंप ने तुर्किया के गजा में तआवुन का जिक्र किया और कहा कि जमा की गई रकम मुनासिब वक्त पर गजा की दोबारा तमीरी नौ के लिए इस्तेमाल होगी। हम गजा अमन कौंसल के रुकमाल की इमदादी कोश में फ्राहम करदा अरबों डॉलर के तआवुन के शुक्र गुजार हैं। ये रकम बर रास्त गजा की तमीरी नौ इमदादी कामों में सर्फ की जा रही है। मराकश, बहरीन, कतर, कुवैत, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, बहुत से दीगर ममालिक ने इसमें हिस्सा डाला। ये ममालिक इंतहाई फयाज साबित हुए हैं।
1: अमरीकी हुकाम के पुरजोर इसरार पर ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराग़ची और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर न्यूयॉर्क में मुलाकात की। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने तस्दीक की कि वो वजीर खारजा अराग़ची अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद थे, जहाँ उन्होंने ट्रंप के मशीरों विटकॉफ और कुशनर से मुलाकात की। अमरीकी हुकाम की मुसलसल दरख्वास्त पर होने वाली इस मुलाकात में अराग़ची ने ईरान के खलीज हुर्मुस की गुजरगाह खोलने के लिए अपनी शराइत अमरीका के सामने रखी। ईरान की जानब से पेश करदा शराइत, अमरीकी बहरी महासरा फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, ईरान के मुंजमद

0: शुदा तमाम आशा से आज़ाद किए जाएं और तमाम इलाकों में जंग का खात्मा किया जाए। न्यूयॉर्क में होने वाली ये मुलाकात तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान जून में पाकिस्तान में तय पाने वाले मुआहदे के बाद दोबारा शुरू होने वाली झड़पों के बाद पहली आला सतही रूबरू मुलाकात थी। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमरीकी हुकाम ने न्यूयॉर्क में ईरानी वफद के नुमाइंदों के साथ एक खुशाइंद मुलाकात की है जो तकरीबन 3 घंटे तक जारी रही।
1: जम्मू कोरिया के सदर ली जे मूंग ने न्यूयॉर्क में कौम तक जन असम्बली के इजलास से खिताब में शुमाली कोरिया के साथ अमन तआवुन पर जोर दिया। बातचीत पुरअमन बकाए बाहमी की बहाली की तजवीज़ पेश की। लिन जज़ीरा कोरिया में पुरअमन बकाए बाहमी के लिए 3 इब्तदाई खाके पेश किए। खाके इख्तलाफात के मुकाबले इतराम बाहमी बहरान के दौरान बाहमी तनाज़ा को गैर जरूरी बना सकने के अहल इंतजामी तरीकाकार के जरिए मुस्तहकम बकाए बाहमी और शुमाल मशरक एशिया से आगे तक अमन के फरोग की जामिन सिमदराना बकाए बाहमी की तजावीज पर मबनी है। ली ने कहा सियोल बैन अल-अक़वामी मैदान में शुमाल का एहतराम जारी रखेगा। इलावाजी सेहत आमा फाज से निमटने और मौसमती बहरान जैसे शोबे में भी तआवुन की कोशिश में रहेगा।
0: जनूबी अफ्रीका के मशरकी सूबे क्वाज़ो वोलो नाताल में एक घर पर मुसल्ला हमले में 11 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए हैं। जनूबी अफ्रीका के नशरियाती इदारे ENCA की खबर के मुताबिक यह हमला डरबन के जनूब में वाक़े कस्बे कवा मखोटा में बरोस मंगल मुकामी वक्त के मुताबिक 11 बजे से कुछ देर पहले किया गया। हमले के नतीजे में हलाक होने वालों में एक हामला औरत भी शामिल है। ताहाल नामालूम हमलावरों ने घर में दाखिल होकर मकीनों पर फायर खोल दिया। 10 अफराद जाए वकुआ पर हलाक हो गए और एक शख्स अस्पताल ले जाते हुए जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। हमलावरों ने फरार होने से पहले घर के मालिक की गाड़ी को भी आग लगा दी। अभी तक हमले की वजह मालूम नहीं हो सकी और हुकाम ने कोई गिरफ्तारी या किसी मुश्तबा शख्स की शिनाख्त भी नहीं की।
1: और रॉकेटसान ने ऐलान किया है कि कलील फासले के टैंक शिकन हथियार खारा ओक ने पहली बार एक फजा हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया है। कंपनी के सोशल मीडिया अकाउंट से जारी बयान में कहा गया मैदान जंग की भरपूर ताकत खारा ओक ने पहली बार एक फजा हदफ को कामयाबी से मार गिराया। हम जमीनी अहताफ के खिलाफ अपनी इफादत को फजाई अहताफ तक मुंतकिल करते हुए खारा ओक की बदौलत मुख्तलिफ खतरात के खिलाफ अपनी कसीर जहती सलाहियत को मजीद मजबूत कर रहे हैं। इस पर इंफ्रारेड मैचिंग यूनिट की बदौलत काराओक दिन और रात के वक्त ऑपरेशन की सलाहियत रखता है। अपनी जरा शिकन कारकर्दगी के साथ मैदान में ऑपरेशनल कुव्वत फराहम करता है। इसके साथ इस तरह तुर्किया से खबरें खत्म हुई।

खूब अंधेरा। दोनों तरफ बुलंद होती हुई तारीखी पथरीली दीवारें और इन दीवारों के दरमियान गूंजती कदमों की आवाजें। तसव्वुर कीजिए कि आप जमीन के नीचे कई मीटर गहराई में

बड़े बड़े दरवाजे बनाना या फिर वक्त आने पर इन दीवारों को अपने ही हाथों से गिरा देना। 1191 में अस्कलान में लिया गया फैसला बिल्कुल यही था। दूसरी तरफ अका ने अपने दिफा को जमीन के नीचे पत्थरों के दरमियान खुदी हुई सुरंगों में मुंतकिल कर दिया, और गजा में एक शहर को कायम रखने वाली ताकत न सिर्फ उसकी दीवारों में थी बल्कि उन रास्तों से गुजरने वाले स्कॉलर्स, कारवानों और सदियों के जमा करदा गहरे विरसे में पोशीदा थी। फलस्तीन के जुग्राफिया की तकदीर लिखने वाले तीन तारीखी शहर, दिफा की तीन अलग कहानियां, और इन सब में एक मुश्तरक सवाल, एक शहर और वतन की हकीकी मानों में हिफाजत कौन सी चीज करती है। अका बाहिर रूम के साहिल पर एक कुदरती खलीज की गोद में आबाद कदीम मुहिमजुई का मरकज और बंदरगाही शहर, ये सदियों तक तिजारत, फौजी नकलो हरकत और हज के रास्तों का अहम तरीन पड़ाव रहा। जैसा कि यूनेस्को ने भी इस बात पर जोर दिया है कि अका कुरून वुस्ता से लेकर आज तक जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे सांस लेते हुए एक गैर मामूली तारीखी विरसे का मालिक है। ममलुक दौर में होने वाली बड़ी तब्दीलियों के बाद सलीबी शहर का एक बड़ा हिस्सा मिट्टी के नीचे दब गया और इसके ऊपर मौजूदा उस्मानी शहर तामीर किया गया। आज जमीन के नीचे इस तह में मौजूद सड़कें, मोहल्ले, इमारतें और एक पेचीदा जेरे जमीन ढांचा इसी तरह महफूज है। अका की कहानी बिल्कुल इसी जगह से शुरू होती है। अगर एक शहर जमीन के ऊपर तबाह भी कर दिया जाए तब भी वो जमीन के नीचे जिंदा रह सकता है और अपनी शनाख्त बरकरार रख सकता है। इस जेर जमीन नेटवर्क की सबसे मशहूर इमारतों में से एक टेम्पलियर्स टनल है। आसार कदीमा की तहकीकात से पता चलता है कि तकरीबन 350 मीटर तवील यह पथरीली राहदारी बंदरगाह को तजवीराती मकामात से जोड़ने वाली एक खुफिया लाइन के तौर पर इस्तेमाल होती थी। जब जमीन के ऊपर जिंदगी रवां दवा थी तो जमीन के नीचे शहर की सलामती और राबते को यकीनी बनाने वाली एक खुफिया रिक का काम करती ही थी। बिलाशुबा अका की मज़ाहमत की कहानी सिर्फ कुरून वुस्ता तक महदूद नहीं रही। जब 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने इस शहर का मुहासरा किया तो जज़ार अहमद पाशा की क़्यादत में उस्मानी फिलिस्तीनी दिफा ने फ्रांसीसी फौज को शिकस्त देकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अका ने दुनिया के सामने एक बार फिर साबित किया कि जब सही हिकमत अमली को यकजा किया जाए तो पत्थर किस तरह एक लाजवाल मज़ाहिमत में बदल जाता है। जब हम साहिल के साथ साथ जुनूब की तरफ बढ़ते हैं तो अस्कलान हमारा इस्तकबाल करता है। मिस्र और शाम, बिलाद शाम के दरमियान अपने तस्वीराती महल वकूअ की वजह से अरब जोग्राफिया में उरूस अल शाम कहलाने वाला यह कदीम शहर अपनी नाकाबिल तस्खीर दीवारों के लिए मशहूर था। ताहम तारीख में अस्कलान की सबसे इनकलाबी कहानी इन दीवारों को गिराने से लिखी गई। 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इस शहर को सलीबियों से वापस लिया, लेकिन चंद साल बाद जब तीसरी सलीबी जंग शुरू हुई तो इस बात का खतरा पैदा हो गया कि यह शहर दुश्मन के हाथ लगकर एक मजबूत फौजी अड्डे में तब्दील हो सकता है। सलाहुद्दीन अयूबी ने 1191 में एक इंतहाई मुश्किल लेकिन तजवीराती फैसला लेते हुए अस्किलान की दीवारों को गिराने का हुक्म दे दिया। एक शहर की हिफाजत के लिए उसकी अपनी दिफाई दीवारों को अपने ही हाथों से तबाह कर देना पहली नजर में यह एक बड़ा तजाद मालूम हो सकता है, लेकिन जंगी कानून और हिकमत अमली में यह एक इंतहाई निपातुला कदम था, क्योंकि मकसद अपनी दीवारों में पनाह लेना नहीं था बल्कि दुश्मन को इस ताकत को दोबारा फलस्तीनी सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोकना था। दर हकीकत अस्कलान की दीवारें सिर्फ एक दिफाई लकीर नहीं थीं, वो इस जमीन पर हाकमियत, फख्र और शनाख्त की अलामत थी। और गजा, गजा में कहानी किस किले से बढ़कर कुछ और बन जाती है, क्योंकि गजा को समझने के लिए नक्शे और इस नक्शे से गुजरने वाले रास्तों पर नजर डालना जरूरी है। मिस्र और शाम के दरमियान अहम तरीन शाहराह पर वाक़ गजा ताजिरों, जायरीन और फौजों का गुजरगाह था, लेकिन इस शहर का शायद सबसे कम जाना जाने वाला पहलू इसका एक अजीम इल्मी मरकज होना था।
آج غزہ کا نام بدقسمتی سے اکثر قبضے اور جنگوں کے حوالے سے لیا جاتا ہے، حالانکہ معتبر جرنل آف دی رائل ایشیاٹک سوسائٹی میں شائع ہونے والی ایک تعلیمی تحقیق تاریخی دستاویزات کے ساتھ یہ واضح کرتی ہے کہ مملوک دور میں غزہ کس طرح